सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026, सुबह के 5:58 और 35 सेकंड्स होने को हैं। आइए करें आरंभ आज की सभा।

0: बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 6 बजने को है, 6 बजते ही रोज की तरह ही हिंदी में समाचार सुनेंगे आप सभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: किए जाएंगे
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद

0: को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हिंदी में समाचार के बाद अब आइए करें आज का चिंतन। विषय है आज ईमानदारी।
2: एक प्रतिष्ठित कार्यालय की प्रोन्नति समिति के सदस्य अपनी कई बैठकों के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विषय उसी कार्यालय के 4 योग्य कर्मठ कुशल प्रशासकों में से किसी एक को ही प्रोन्नति देने का था। अंत में उस समिति के सदस्यों ने इस विषय को कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास इस निर्णय के साथ भेज दिया। हम लोगों के विचार से किसी एक को ही प्रोन्नत करना शेष तीनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय करते हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रोन्नति का फैसला आप ही करें। इसके बाद उन अधिकारियों के मासिक वेतन के भुगतान के पूर्व सर्वोच्च अधिकारी ने वेतन भुगतान कर्मचारी को बुलाकर कुछ अत्यंत गोपनीय आदेश दिए। यथासमय चारों अधिकारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। वेतन भुगतान के बाद ठीक दूसरे दिन उन चारों में से एक अधिकारी आकर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारी को ये कहकर कुछ रुपये लौटा गया कि मेरे वेतन लिफाफे में गलती से ये रुपये वेतन के रूप में अधिक थे, कृपया इसे वापस ले लें। इसके कुछ दिनों के बाद इन चारों में से एक व्यक्ति की प्रोन्नति की सूचना कार्यालय में प्रचारित कर दी गई। शेष तीनों सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंच गए कि उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। प्रोन्नति देने का कारण स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च अधिकारी ने कहा, आप तीनों भी योग्य हैं किंतु ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के अभाव में आपके सारे गुण अधूरे हैं। आपके वेतन के लिफाफे में वेतन के रुपये से अधिक रुपये थे किंतु आपने इसकी चर्चा तक नहीं की। आप में से जो ईमानदार है उसी की प्रोन्नति हुई है। तीनों लज्जित होकर लौट आए। ये घटना कहने सुनने में छोटी लग सकती है किंतु इसमें ईमानदारी का सामर्थ्य स्पष्ट हो जाता है।

0: अनेक कमजोरियां हैं, किंतु यदि हम में ईमानदारी है तो उसकी चमक में ये सारी कमजोरियां और त्रुटियां छिप जाती हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि दुनिया का व्यवहार ईमानदार बने रहने से नहीं चल सकता। व्यवहार में तो ईमानदारी घाटे का सौदा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि व्यापार में साख उसी व्यापारी की बनी रहती है जो ईमानदार होता है। ऐसा व्यापारी अपनी चीजों के क्रय मूल्य का चिट्ठा अपने उपभोक्ताओं को निसंकोच दिखाकर उसमें ईमानदारी से अपना उचित मुनाफा जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है और तब उसकी दुकान से वस्तु को खरीदने में किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। बेईमान व्यापारी कुछ दिनों तक ही अपने खरीदारों को ठग सकता है, पर उसकी पोल खुलती ही है और तब 4 दिनों की चांदनी अंतहीन अंधेरी रात बनकर सामने आती है। अपने अपने पेशों के प्रति ईमानदारी बनी रहे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या वो डॉक्टर ईमानदार है जो अपने रोगी को उसके रोग की सही जानकारी नहीं देकर केवल उसे अपनी आमदनी का अच्छा जरिया समझता है? क्या आप उस योग्य शिक्षक को ईमानदार मानेंगे जो कक्षा में अपना विषय केवल इसलिए अच्छी तरह नहीं समझाता कि इसके कारण विद्यार्थी अलग से उससे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे? उस कुशल प्रशासक में भी ईमानदारी का अभाव है जो बड़ी चालाकी से जांच के फंदे से अपने को बचाते हुए काम उन्हीं का मुश्तैदी से पूरा करता है जिनसे उसे बड़ी रकम हाथ लगती है। कार्यालय में काम करने वाले वे सभी व्यक्ति ईमानदारी से हट जाते हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने नियत स्थान से हट हट कर इधर उधर घूमने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, और उस नेता में भी ईमानदारी के दर्शन नहीं होते जो लोक लुभावने वायदे तो करता है पर उसे पूरा करने की सोचता तक नहीं। यदि कोई हमें बेईमान कह देता है तो इसे हम सहज ही नहीं झेल पाते, सुनकर तिलमिला जाते हैं, इसे सबसे बड़ी गाली मानते हैं, और है भी ये सबसे बड़ी गाली। पर ये गाली नहीं सुननी पड़े या ये गाली किसी प्रकार हम पर सही ना उतरे, इसके लिए हमें ईमानदारी को अपने चरित्र का स्वाभाविक गुण बनाना ही होगा। ईमानदार व्यक्ति का लोहा उसके दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कूटनीतिक चालें राष्ट्रपिता गांधी की ईमानदारी का सामना करते ही प्रभावहीन हो जाया करती थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा को उनकी ईमानदारी ही अमोघ अस्त्र बना देती थी। अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों, तात्कालिक लाभों और बड़े से बड़े प्रलोभनों को सहर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के लाभ कौड़ी के 3 हो जाते हैं। ईमानदारी वो जल भरी नदी है जिसमें हमारे गुणों की नाव सहज भाव से चल सकती है। ये न रहे तो हमारे गुणों का जीवन में अग्रसर होना कठिन हो जाता है।
1: ईमानदारी, इस विषय पर आज हम सभी कर रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र को आपने ट्यून किया है आज 19 जून की प्रातःकालीन सभा में। भक्ति संगीत की प्रस्तुति के लिए मैं माणिक चक्रवर्ती आप सबको नमस्कार और प्रणाम कहता हूं। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जीवन की कठिन डगर में प्रभु का स्मरण ही सच्चा पथ प्रदर्शक बनता है। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में ईश्वर से सही राह दिखाने की विनम्र प्रार्थना करते हैं महेंद्र कपूर के स्वर के साथ।

यह संसार क्षणभंगुर है, यहां किसी बात का अहंकार स्थायी नहीं है। संतों की वाणी हमें विनम्रता और सत्य का संदेश देती है और यही अगले भजन में मोहम्मद रफी साहब कह रहे हैं।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती के साथ आज प्रातःकालीन सभा में भक्ति संगीत पर आधारित दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हैं हम सभी वंदना। श्रोताओं, संत कबीर बाहरी आडंबर से अधिक मन की पवित्रता को महत्व देते हैं। प्रस्तुत है उनकी अमर वाणी जो आत्मचिंतन का हमें संदेश देती है।

हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो किस बात की हमें चिंता होनी चाहिए। जिसके जीवन में श्रोताओं प्रभु श्री राम का आश्रय हो, उसके मन से भय और चिंता स्वतः दूर हो जाती है। इसी अटूट विश्वास का सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहा हूं।

जब हृदय में सियाराम का वास हो तब जीवन प्रेम करुणा और सद्भाव से भर ही उठता है। आइए इसी भाव से ओतप्रोत ये भजन सुनते हैं। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से सुन रही हैं।

हरि ओम शरण की आवाज है चलते चलते जगत जननी माँ से यही प्रार्थना कि वे हमें स्नेह दया और करुणा की अविरल धारा सब पर बरसाते रहें। ये भजन भक्ति से सराबोर ये भजन।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका अपना FM 102.1 MHz, प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की श्रृंखला
1: एपिसोड नंबर 5।

आओ संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंदज, उद्भिज तथा जरायुज ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

श्री रामचरित मानस गान की आज की श्रृंखला हम सभी सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। ये समय है कार्यक्रम विवरण का। ये वो कार्यक्रम जिन्हें आज आप सबके लिए प्रसारित और रिले होने हैं।

श्रोताओं, आज सुबह 7 बजे लोक गीतों का कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। भोजपुरी, खोरठा, नागपुरी लोक गीतों के साथ हाजिर होगा। 7:20 का समय है काव्य धारा का। आज कवियत्री शिखा जैन से कविताएं सुनेंगे। सुबह 7:30 पर गीत संगीत का दौर चलेगा। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी का लुत्फ उठाइए आज सुबह 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होंगे सुबह 9 बजे और सुबह 10 बजे कहने आऊंगा हेलो हजारीबाग, जिसमें आज सुविचार, आज का इतिहास और संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह कार्यक्रम, ये बातचीत होगी हमारी। साथ ही भेंटवार्ता होगी योग से लाभ, इस विषय पर। स्थानीय गतिविधियों पर डालेंगे नजर, खेल की गतिविधियों पर डालेंगे नजर, मौसम की जानकारी होगी और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ साथ कई गीतों संगीतों का दौर चलेगा। और सुबह 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होंगे।

संध्या 4 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा, तो वहीं दोपहर 3 बजे आप सभी सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी का आज का भाग सुनिएगा शाम 4:30 पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार संध्या 5 बजे होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से नवरीले करेंगे। संध्या 5:02 पर इवनिंग मेलोडी का लुत्फ उठाइएगा। संध्या 5:00

10 मिनट पर विज्ञान भवन नई दिल्ली से में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 समारोह का प्रसारण किया जाएगा।

0: संध्या 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार सुनिएगा। और 6:02 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा अंगना। आज की चर्चा का विषय गर्भावस्था में तनाव और चिंता कम करने में योग की बहुत सारी भूमिका और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित योगासन। संध्या 6:30 पर फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा। और संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। और 7:30 पर खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। सात पर ऑल टाइम हिट्स ये सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है। और रात्रि 8 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत सुनिएगा। 8:10 पर विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। रोज की तरह ही 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। यहीं से स्पॉटलाइट 9:15 पर होगा। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रजनीगंधा सुनिएगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर एक फिल्म से। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। और सभा का समापन रोज की तरह ही 11:10 पर। तो ये कार्यक्रम थे जिन्हें रिले होने हैं आज। और आप सभी अब बस थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंश इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर।

0: यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,700,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमति दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले बालेश्वर और उनके साथियों से ये भोजपुरी लोक गीत का आनंद लीजिए।

0: रे रे रे रे गोरखापुर के हो गोरखापुर के
1: जिया जिया जिया
0: गोरखापुर के हो गोरख

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: एक बार फिर से कार्यक्रम लोक रंग में आप सबका स्वागत। खोरठा लोकगीत सुनिए चंद्रिका कुमार से।

आपने ट्यून किया FM 102.1 MHz आज 19 जून की सुबह। अगला कार्यक्रम है काव्य धारा, सुनवाऊंगा बस थोड़ी ही देर में।

0: लीजिए प्रस्तुत है काव्य धारा। कवियत्री शिखा जैन से आज सुनिए उनकी कविताएं।
1: मेरी कविता का शीर्षक है मुझे कविता लिखना नहीं आता। मुझे कविता लिखना नहीं आता, ये तो तुम हो जो कागज पर उतरते हो तो कविता बन जाती है। तुम्हारी बातों की मिस्री है जो मेरे शब्दों को मीठा कर जाती है। तुम्हारे ख्यालों की खुशबू है जो मेरे ख्यालों को महका जाती है। तुम्हारे पास होने की कशिश है जो मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आती है। हाँ, मुझे कविता लिखना नहीं आता। दूसरी कविता का शीर्षक है मर्ज़े इश्क। सुना है वह बड़ा नामवर है हकीम, मगर मर्ज़े इश्क की दवाई न दे। नहीं कोई मरता बिछड़ कर, मगर खुदा किसी को किसी से जुदाई न दे। उसकी आँखों से कुछ भी छिपता नहीं, एक मेरा दर्द उसको दिखाई न दे। दर्द लिखती हूँ गजल न समझो इसे, दर्द पर मेरे कोई बधाई न दे। अगली कविता का शीर्षक है मैं एक स्त्री हूँ, अपने पिता से भी रिश्तों का हिसाब देना पड़ता है। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, किससे कैसे बात करूं, हर बात का सलीका मुझे सिखाया जाता है। कुछ इस तरह मेरी जात का मजाक उड़ाया जाता है। वक्त खराब है ये कहकर पर्दों में मुझे बैठाया जाता है। वक्त खराब पुरुषों ने किया और मर्यादा का पाठ मुझे पढ़ाया जाता है। मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशों की कुर्बानी चाहती है मुझसे ये दुनिया। ना दूं अगर तो खुदगर्ज भी मुझे ठहराया जाता है। साल महीने दिन नहीं, हर पल का हिसाब देना पड़ता है। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगली कविता का शीर्षक है गुम हो जाऊंगी। कमरे की बिखरी चीजों में ही गुम हो जाऊंगी, तुम लाख पुकारोगे फिर भी लौट ना पाऊंगी। आईने पर चिपकी बिंदियां, ड्रेसिंग पर बिखरी चूड़ियां, दरवाजे पर टंगी चुन्नियां, अलमारी में भरी साड़ियां, वो मेरा हेयर ब्रश और बेतरतीब पड़े क्लिप्स, मेरी अंगूठियां, मेरी घड़ियां, मेरा काजल, मेरी पायल और सिंदूर की छोटी डिबिया, टेबल पर बिखरी किताबें और डायरी के बिखरे पन्ने,

सब तुमको सताएंगे, रह रहकर मेरी याद दिलाएंगे। कभी कभी मेरी पागलों सी हंसी की आवाज भी आएगी और तुम्हारी नजरें मुझे खोजने लग जाएंगी। तुम जो अभी लापरवाह कहते हो मुझे, फिर इन्हीं बिखरी चीजों में ढूंढोगे मुझे। अगली कविता का शीर्षक है तुम आओ तो अपने साथ ले आना वो सारे गुजरे लम्हे जो गुजर कर भी ना गुजरे। तुम आओ तो अपने साथ ले आना वो दिन भर होती बरसातें, वो सर्दियों की रातें, गर्मियों की शामें, पतझड़ और बसंत, वो सारे मौसम जिनमें तुम नहीं थे मेरे संग। ले आना अपने साथ टूटे सपने, अधूरी चाहतें, अनकहे वादे, जागती रातें, वो सारे बेचैनियों भरे पल और वो उलझन जिसका नहीं निकला कभी कोई हल। तुम आओ तो ले आना तुम्हारा बचपना, शरारतें और मेरा पागलपन, लेकिन आने से पहले टटोल लेना अपना मन। आना तो पहले वाले तुम बनकर, जिसकी आंखों में मेरे लिए होता था प्यार और अपनापन। तुम आओ तो ले आना मेरे उस तुमको। अगली कविता है तेरा ख्याल। कुछ तो है हम दोनों के दरमियाँ जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। कुछ लोग पागल भी समझते हैं मुझे, पर ये मर्ज भी सबको नहीं होता। मुस्कुरा देती हूँ तेरे हर सितम पर और तू समझता है मुझे दर्द नहीं होता। खाक कर दिया है खुद ख्वाहिशों को अपनी, अब किसी बात का रंज नहीं होता। रस्म उल्फत से बड़ी कोई रस्म नहीं होती, ये वो कर्ज है जो उम्र भर अदा नहीं होता। पटक लेती हूँ सिर अपना घर की दीवारों पर, क्यों तेरा ख्याल मुझसे जुदा नहीं होता। अगली कविता है एकांत। तुम्हारे प्रेम में मैंने तुम्हारा सानिध्य भी नहीं चाहा, सुना अनकहा भी, महसूसा बिन छुए भी, बिन आवाज कई बार तुम्हें पुकारा भी, पर कभी तुम्हें खुद से बांधना भी नहीं चाहा। प्रेम में मैंने कभी नहीं दिया तुम्हें कोई अनौपचारिक सा संबोधन, बातों का सिलसिला भी रहा बेहद औपचारिक। देश, दुनिया, धर्म, शिक्षा आदि चर्चाओं के मध्य बिना संकेत ही उपजाया प्रेम। जैसे खेतों में अनचाहे उगाती है खरपतवार, प्रेम में निकटता किसे भली नहीं लगती, पर मैंने चुना एकांत तुम्हारे लिए, तुमसे अधिक स्वयं के लिए। क्योंकि अनचाहे उगी खरपतवार फसलों को नष्ट कर देती है। अगली कविता है दुआ। मेरी गली में वो आए कभी, बनके खुशबू मुझे महकाए कभी, रोशन कर दे इस तरह से जहां मेरा, बनके चांद फलक पर जगमगाए कभी। ख्वाहिश है इतनी सी मेरे दिल की, सूरज बन मुझको जगाए कभी, तर कर दे मेरी रूह को अपनी चाहत से, बारिश की पहली बूंद बन जाए कभी। उसकी सूरत दिखे देखूं मैं जिधर, बनके काजल आंखों में समाए कभी। नींदे उड़ाई है जिसने मेरी, खुदा उसकी भी नींदे उड़ाए कभी। अश्क बनकर पलकों पे उतर आता है जो, खुशी बनकर लबों पर मुस्कुराए कभी। जिसके आने की अब कोई सूरत नहीं, बाहर बनके जिंदगी में लौट आए कभी। इश्क उल्फत मोहब्बत पना होंगे सभी, है दुआ वो इबादत मेरी बन जाए कभी। अगली कविता का शीर्षक है बंटवारा। उसके हिस्से नींदे आई, मेरे हिस्से में रच जगा, उसने चुन ली खामोशी, मैंने चुन लिया कह कहा। उसने सारे दर्द समेटे, मैंने मीठी यादें रख ली, वो रोया तन्हाई में और मैंने गीली पलके चख ली। कसमे वादे पीछे छूटे, प्रेम प्यार के बंधन टूटे, वो आगे बढ़ गया राह में, मैं उससे कुछ पीछे छूटी। दिन बीते और रातें बीती, उसके बिन बरसातें बीती, सब कुछ बांटा था आपस में, सब कुछ बट गया इस तरह। उसके हिस्से नींदे आई, मेरे हिस्से में रच जगा। अगली कविता है महिला दिवस। त्वचा का रंग गोरा होना चाहिए और बाल लंबे काले,

0: कमर पतली होनी चाहिए और विशेष अंग उभरे सुडौल, लंबी हो पर पति से ज़्यादा नहीं, खाना अच्छा बनाती हो, सलीके से घर सजाती हो, जब सजे सवरे तो हीरोइन को भी पीछे छोड़े, मुंह में जबान तो हो पर ज़रूरत जितना ही बोले, उच्च शिक्षित हो पर नौकरी ना करे, अंग्रेजी जानती हो पर हिंदी में बात करे, हर जगह आत्मनिर्भरता का स्वांग ना भरे, अपने घर में अपनों से ही डरे, नौकरी करे तो वेतन पर अधिकार ना जताए, अधिक योग्य होकर भी कार्यालय में समान वेतन के लिए आवाज ना उठाए, घर परिवार बाजार हर जगह शोषण का शिकार हो पर फिर भी आज़ादी का ढोल बजाए। चलो बहनों ऐसे ही महिला दिवस मनाएं। अगली कविता है बसंत आ रहा है। मन का कोई हिस्सा रोज रोज जर्द पड़कर झड़ता जा रहा है और चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है बसंत आ रहा है। गांव शहर सब तब्दील हो गए कंक्रीट के जंगल में और धरती का सौंदर्य बस बगीचों बालकनियों तक सिमटता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है बसंत आ रहा है। कोयले अब पहले सी बावरी नहीं होती, गौरैयों का परिवार खोता जा रहा है, सारी दुनिया सिमट गई है गूगल पर, यह संसार कितना छोटा होता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है बसंत आ रहा है। अब सरस्वती की वंदना कोई नहीं गाता, वीणा की मधुर तान भी कोई न बजाता, नशे में झूमते हैं बालक पूजा पंडालों में, अश्लील गीतों का भंडार बढ़ता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, वसंत आ रहा है वसंत आ रहा है। मनुष्यता अब किसी को भली नहीं लगती और प्रेम करना अपराध होता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, वसंत आ रहा है वसंत आ रहा है।
1: कई तरह की कविताएं और कई मन को छू जाने वाली सभी कविताएं शिखा जैन से हम सभी सुन रहे थे। ये कवियत्री आज हमारी इस मंच पर थी काव्यधारा के। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में गीत संगीत का दौर चलेगा। आपने ट्यून किया अपना फेवरेट चैनल FM 102.1 MHz न्यूज।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: गीत संगीत सुन रहे हैं आप सभी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज थी। गीत संगीत का सफर अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 8 बजते ही समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 का समय है प्रादेशिक समाचार का, तो इन सब के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते

0: थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मंडी से दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल

0: दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नान सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र

0: सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफीद सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger

0: tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। झारखंड में इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे उच्च सदन में झारखंड के जनहित, विकास और जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इधर जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिमल नाथवानी ने झारखंड में अपनी एक अलग साख और विश्वास बनाया है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में उनकी जीत पर जश्न मनाया गया। धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
3: 12 साल बेमिसाल देश के लिए आज गर्व का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित किए और उस समय से लगातार देश को विकास के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मान स्वाभिमान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि से वृद्धि होते जा रहा है।
2: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे

0: क्यों इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव इस तरह के मामलों में कोर्ट के पारित आदेश को गंभीरता से लें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल रांची के शहरी क्षेत्रों में बिजली विभाग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों में भी भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्यभर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चाईबासा जिले में भी कई जगह योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक राजेंद्र सलूजा ने कहा कि स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है।
1: से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है, तब से लोगों का झुकाव हुआ है योग के प्रति और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में इसका लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसमें और जागरूक होने की जरूरत है। योग जो है बात करने की चीज नहीं है, योग को करना पड़ता है, इसको जीवन में उतारना पड़ता है।
0: आदित्यपुर नगर निगम में नए नगर आयुक्त के रूप में एजाज अनवर ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री अनवर ने कहा कि निगम क्षेत्र का समग्र विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की शुरुआत साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से की जाएगी।
2: योगदान के बाद में जो सबसे पहली प्राथमिकता नगर का नॉर्मल है तो डेवलपमेंट यहाँ का पहला प्राथमिकता है और उसकी शुरुआत साफ सफाई से शुरू करेंगे और उसके किन-किन चीजों प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी के बेसिस पर करना है सावधानी है।
0: पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने क्राइम मीटिंग के बाद बताया कि जिले में भू माफियाओं और अवैध भूमि कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
3: समीक्षा के क्रम में जिस थाना प्रभारी ने अच्छा काम किया था उनको रिवॉर्ड दिया गया। इसके साथ साथ इस क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स हैं, पिछले 10 साल के अलग अलग अपराधों के क्रिमिनल्स हैं, उनका वेरिफिकेशन तथा जेल से छूटने वाले जो अपराधी हैं उन पर किस प्रकार से विशेष निगरानी रखी जाए इसकी चर्चा की गई है।
0: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची, खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में वज्रपात की आशंका को देखते हुए रांची सहित 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष समाचार विराम के बाद।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: खंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अब कुछ खेल समाचार। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का कल भव्य समापन हुआ। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को सीधे सेटों में 25-23 और 25-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग के रोमांचक फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्यसभा चुनाव में झारखंड में हुए बड़े उलटफेर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग, झामुमो की जीत, महागठबंधन का प्रणव हारा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन की समीक्षा। हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची में संघ कार्यालय पर हमले के आरोपियों के संबंध पाकिस्तान से। और दैनिक जागरण ने राज्य में वज्रपात से बच्ची समेत 5 की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को दी बधाई। जीत के बाद परिमल नाथवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, मनाया गया जश्न। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। रांची, खूंटी और झारखंड के कई जिलों में आज सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए 14 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और 12वीं नेशनल रोलर स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक किए अपने नाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही

ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मेलोडी, कहानी किस्मत की। यह फिल्म का नाम, मुकेश गा रहे हैं इस गीत को। आपने ट्यून किया आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, चल रहा है मॉर्निंग मेलोडी।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़। सुबह के 9 बजने वाली हैं और 9 बजते ही विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सभी सुनेंगे।
1: कार्यक्रम चतुर्लोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

बोल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दी लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभु वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू जगमगा जहां।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए, रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन

किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृग्या के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आई और गईं। पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी
1: का जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई, अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर, यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव,
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल।

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: सुप्रभात हजारीबाग, हेलो हजारीबाग। आज की सुबह 19 जून की सुबह आप सबके साथ आप सबका दोस्त और आज के पूरे एक घंटे के कार्यक्रम का होस्ट हूं मैं, माणिक चक्रवर्ती। सबको कहता हूं नमस्कार जोहार। नमस्कार जोहार के बाद आज का सुविचार, जीवन में सूरज की तरह चमकना है तो हर दिन नई शुरुआत करनी होगी। बीता हुआ कल अनुभव है, आने वाला कल आशा है और आज का दिन सबसे बड़ा अवसर। मुस्कान, मेहनत और सच्चाई को अपना साथी बनाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, सफलता स्वयं आपके द्वार आएगी। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसका जीवन भी उजालों से भर ही जाता है। आपका आज का दिन मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। और हम अब कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला पायदान।

ये है पहला पायदान। आप सबका हार्दिक स्वागत इस पायदान पर। आइए जानते हैं 19 जून के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, महान व्यक्तियों के जन्म और पुण्यतिथि और आज मनाए जाने वाले विशेष दिवसों के बारे में। 19 जून संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज संयुक्त राष्ट्र द्वारा जागरूकता और पीड़ितों के सम्मान के लिए मनाया जाता है यह दिवस। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस है आज। इस अनुवांशिक रक्त रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है आज। जूनटिंथ अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की ऐतिहासिक स्मृति का दिवस है आज। और अब चलिए जानते हैं 19 जून का इतिहास, भारत और विश्व में क्या क्या हुआ था आज ही के दिन। सबसे पहले वर्ष 325 फर्स्ट काउंसिल ऑफ निकोसिया में महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था आज के दिन। वर्ष 1864 को

बैटल ऑफ यूएसएस में इसे सीएसएस अल्बोमा को पराजित किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1865 को अमेरिका के टेक्सास में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई, जिसे आज जून टिंथ के रूप में याद कर रहे हैं। वर्ष 1990 पहली बार फादर्स डे का आयोजन अमेरिका के स्पोकेन नगर में किया गया। वर्ष 1934 आज के दिन अमेरिका में संघीय संचार आयोग FCC की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 1945 चिली की प्रसिद्ध खादान दुर्घटना में सैकड़ों मजदूरों की मृत्यु हुई थी आज के दिन। वर्ष 1977 को ओलिव बर्डन पॉवेल का निधन हुआ, जिन्होंने गर्ल गाइड आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में। आज दिन है 19 जून 1947 को आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक, जिनकी रचनाएं साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं, लो ग्रिंग, उनका निधन हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ 19 जून 1903 को बेसबॉल इतिहास के महान खिलाड़ी का, और जेना रॉलेंड्स, इन्हें 19 जून 1930 को विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री ये थी, जिन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। एथेल रोजेनबर्ग, 1953 में इनकी मृत्यु हुई, ये शीत युद्ध काल के चर्चित व्यक्तित्व रहे। ओलिव बॉर्डन पॉवेल, 1977 में इनका निधन हुआ, ये विश्व गर्ल गाइड आंदोलन के मुख्य हस्ती थी। महत्व क्या है आज 19 जून का बताता हूं, लेकिन उससे पहले कहना होगा हम सबको एक साथ हेलो हजारीबाग। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, विविध संस्कृतियों और ऐतिहासिक परंपराओं का देश है भारत। 19 जून का दिन हमें मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने का अवसर देता है। विशेष रूप से विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हमारे देश के अनेक राज्यों में इस बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का संदेश देता है।

साथियों, आज के समय में जब दुनिया शांति और विकास की ओर बढ़ रही है, तब यह आवश्यक हो गया कि हम उन लोगों की पीड़ा को भी समझें जिन्होंने संघर्षों के कारण अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया।

साथियों, श्रोताओं, इतिहास केवल बीती घटनाओं का संग्रह नहीं होता बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी होती है। और 19 जून हमें मानवता, समानता, न्याय और संवेदनशीलता का संदेश दे रहा है। यह दिन बता रहा है कि समाज तभी प्रगति करता है जब वह कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को महत्व देता है। महान व्यक्तियों के जीवन से हमें परिश्रम, साहस और सृजनात्मकता की प्रेरणा मिलती है। वहीं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि एकजुट होकर समाज और विश्व को बेहतर बनाया जा सकता है।

और ये पायदान अब टाटा बाय बाय कह दिया ने कह दिया है बाय बाय। और बाय बाय कहते ही अगला पायदान खड़ा है जहां संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे।

ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखना है, क्योंकि अपना जीना और मरना उन्हीं के हाथों है। भाई, मरने की बात तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जीने की कहानी हेलो हजारीबाग के साथ आप हर सुबह तय करते रहिए।

0: अंडा खाने के फायदे और नुकसान क्या क्या है? जी हाँ, अंडा, एग या बांग्ला में डीम, आजकल अंडे की ज्यादा ही चर्चा हो रही है देश में। तो मैंने सोचा कि हेलो हजारीबाग के श्रोताओं को बता दूं कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार संवेद स्वर में कह दें हेलो हजारीबाग।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती कहने को हेलो हजारीबाग। अंडा खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताता हूँ। साथियों, अंडा एक पौष्टिक आहार माना जाता है और इसमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। तो फायदे क्या क्या हैं इनके? प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है। एक मध्यम आकार के अंडे से में लगभग 6 से 7 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है और आंखों के लिए बड़े लाभकारी है। इसमें ल्यूटिन और जिएक्सैथिन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। दिमाग के लिए भी फायदेमंद है अंडा। अंडे में कोलीन होता है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही हड्डियों को मजबूती देता है अंडा। इसमें विटामिन डी होता है, जो कैल्शियम के उपयोग में मदद करता है। वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है अंडा। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण अंडा देर तक पेट भरा होने का एहसास करवाता है और बाल और त्वचा के लिए भी अच्छा है अंडा। बायोटीन और प्रोटीन बालों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए योगदान देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत होती है। इसमें विटामिन ए, B12 और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। गर्भावस्था में पोषण देता है अंडा। कोलीन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है अंडा और ऊर्जा का तो अच्छा स्रोत है अंडा। इसमें विभिन्न विटामिन और स्वस्थ वसा होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किफायती और पौष्टिक है अंडा। कम लागत में उच्च पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों में अंडा शामिल है। अब नुकसान और इससे सावधानियां। भाई, अंडा खाने से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, विशेषकर बच्चों को अंडे से एलर्जी हो सकती है। कच्चा अंडा खाने से बचिए। कच्चे या अधपके अंडों में बैक्टीरिया का जोखिम हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पकाकर ही खाना बेहतर। सीमित मात्रा में सेवन कीजिए। अधिकांश स्वस्थ लोग प्रतिदिन एक अंडा या उससे अधिक भी संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इन्हें खा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सलाह अलग हो सकती है। अधिक तेल या मक्खन में पकाने से बचिए। अंडा जो है वो स्वयं एक पौष्टिक है।

0: लेकिन बहुत अधिक तेल या मक्खन के साथ बनाने से अतिरिक्त कैलोरी और संतृप्त वसा बढ़ सकती है। और जिन लोगों को कुछ विशेष चिकित्सीय समस्याएं हैं, उन्हें अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अंडे की मात्रा तय करनी चाहिए। माणिक जी, एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं? ठीक पूछा आपने। देखिए, आपके दिल की बात मैंने कैसे सुन ली, क्योंकि नाम ही है हेलो हजारीबाग। ये स्वस्थ वयस्क की अगर बात करें तो सामान्य 1 से 2 अंडे प्रतिदिन संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। खिलाड़ी या अधिक शारीरिक श्रम करने वाले जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कुल आहार और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे जो है उम्र और पोषण की जरूरत के अनुसार 1 अंडा प्रतिदिन आमतौर पर खा सकते हैं। यानी अंडा एक अत्यंत संतुलित खाद्य पदार्थ है। इसे अच्छी तरह से पकाकर और संतुलित मात्रा में खाने से अधिकांश लोगों को लाभ मिलता है। यदि किसी को अंडे से एलर्जी है या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिए। और हेलो हजारीबाग आप सुन रहे हैं, तो अंडे से संबंधित एक गीत मैं लेकर आया हूँ, उसे सुनकर आनंद लीजिए।
1: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

अंडे का फंडा जान तो रहे हैं आप, गा और गुनगुना भी रहे हैं, लेकिन तापमान मौसम का जान लीजिए। आज अधिकतम दिन में 35 डिग्री सेल्सियस, रात में 22.8 डिग्री न्यूनतम सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहने की संभावना, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, अब बातचीत करने का समय। संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज 19 जून को विश्व भर में संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, यह दिवस मानवता, सम्मान और न्याय के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इसका उद्देश्य उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना है जिन्होंने युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और हिंसक परिस्थितियों में यौन हिंसा जैसी अमानवीय घटनाओं का सामना किया है। श्रोताओं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। महिलाएं, बच्चे और कई बार पुरुष भी ऐसी परिस्थितियों में असुरक्षा और हिंसा का शिकार बनते हैं। यौन हिंसा केवल शारीरिक पीड़ा नहीं देती बल्कि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जीवन पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस गंभीर विषय पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज 19 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं दर्शकों, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा, उन्हें न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना भी है। यह दिवस हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को समाज से सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। कई बार सामाजिक संकोच या डर के कारण पीड़ित अपनी बात सामने नहीं रख पाते। ऐसे में परिवार, समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करें और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। श्रोताओं, शांति और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। जब समाज में समानता, सम्मान और न्याय की भावना मजबूत होती है ना, तब हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याओं में काफी कमी आ जाती है। इसलिए बच्चों और युवाओं को बचपन से ही मानवीय मूल्यों, समान अधिकारों और दूसरों के सम्मान की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक। आज विश्व के अनेक देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं। पीड़ितों के पुनर्वास, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोसामाजिक सहयोग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। साथ ही यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि संघर्ष की परिस्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हमारे देश में भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा सम्मान के लिए अनेकों कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। साथियों, सरकार और सामाजिक जो संगठन हैं, समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते रहते हैं। लेकिन केवल कानून ही पर्याप्त है क्या? समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव भी तो चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण ही हो जाती है ना? श्रोताओं, इस दिवस का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी कि किसी भी परिस्थिति में मानव गरिमा सर्वोपरि है। हिंसा, भय और अन्याय की जगह यदि हम संवाद, सहयोग और करुणा को अपनाएं तो

आज के समय में जब दुनिया शांति और विकास की ओर बढ़ रही है, तब यह आवश्यक हो जा रहा है कि हम उन लोगों की पीड़ा को भी समझें जिन्होंने संघर्षों के कारण अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनके प्रति संवेदना, सहयोग और न्याय की भावना ही एक सभ्य समाज की पहचान। अंत में यही कहना चाहूंगा हेलो हजारीबाग के श्रोताओं को कि 19 जून का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिला रहा है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी भी है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण का संकल्प ले लें आज इसी समय, जहां मानवाधिकारों का सम्मान हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और हर व्यक्ति भयमुक्त होकर अपना जीवन जी सके। तो चलिए ना, आज ही तो मौका है, इसी समय संवेदनशीलता और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और इसका संकल्प लें। भाई हेलो हजारीबाग में अब गीत ने दे दी दस्तक।

हजारीबाग नगर निगम ने चलाया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई शहर के 3 प्रमुख इलाकों में हुई। कारगिल चौक और हुरहुरु चौक पर के सड़क पर वेस्ट मटेरियल बिखरा मिलने पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। अवैध रूप से डंप किए गए बालू से लदा ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की शिकायत के बाद कॉलेज परिसर के आसपास लगी अस्थायी दुकानें हटाई गई। सदर अस्पताल के दोनों मुख्य गेट के पास भी अभियान चलाया गया। गेट बाधित कर रही 20 से 25 अस्थायी दुकानों को हटाया गया और इसे ध्वस्त भी किया गया। नियम उल्लंघन पर 6,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान कुल 11,500 रुपए वसूले गए। आज शहर में कहां क्या हो रहा है, भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। इसका आयोजन झील सेंटर है और समय है संध्या 6:30। मुनिश्री का प्रवचन है, कहां पर है बता दूं, बड़ा बाजार जैन मंदिर, समय 8 बजे रात्रि से। और डीएवी स्कूल में एंडी ग्रोवर सुपर परफॉर्मेंस सम्मान समारोह है, समय है 9:45 से, शुरू भी हो चुका है।

0: श्रोताओं, अब भेंट वार्ता का समय है, योग दिवस आने को है, तो ऐसे में योग से लाभ क्या क्या है? भेंट वार्ताकार है संजयानंद ब्रह्मचारी और भेंट करता है अंजलि सिन्हा।
1: श्रोताओं, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो हम लोग हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज योगा के बारे में विशेष जानकारी देने हमारे स्टूडियो में आए हैं संजयानंद ब्रह्मचारी जी। तो संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको बताइए कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
2: योग की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल में ऋग वेद और साम वेद में उत्पत्ति हुई, जो वेदों की डायरेक्ट महावाक परमात्मा का है, जो त्रिकालदर्शी वेद व्यास ने पूर्ण रूपेण योग का एक्सप्लेन किए हैं, उसी के विषय में मैं कुछ जानकारी दूंगा।
1: अच्छा, तो इसके बाद आप बताइए कि योग का अर्थ क्या है।
2: योग का अर्थ होता है डायरेक्ट कनेक्शन, एक और एक दो, आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से, सोल का कनेक्शन डायरेक्ट सुप्रीम सोल से, किस समय लगाना चाहिए अटैचमेंट, सुबह में किस समय और शाम को किस समय। अर्थ इसका ये होता है कि योग एक और एक दो, मतलब आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से।
1: तो योग कितने प्रकार के होते हैं?
2: योग की संख्या अनेक है, लेकिन कुछ योगासनों की संख्या संक्षेप में मैं बताऊंगा। लेकिन योग होता है एक ध्यान योग। ध्यान योग क्या होता है कि सुबह में किस समय करना चाहिए और शाम को किस समय करना चाहिए, और योगासन भी किस समय करना चाहिए सुबह में और शाम को किस समय करना चाहिए। अब ध्यान योग करने का टाइम है सुबह में 5 बजे ब्रह्म वेला, अमृत वेला जिसको बोलते हैं, सूर्य उदय होने के बिफोर। अगर आधा घंटा भी लोग अगर अपनी सुप्रीम पावर से अगर कनेक्शन जोड़ते हैं विधिवत रूप से, तो जो भी वो अपनी मन की बातों को कहेंगे उनकी समस्या जरूर अवश्य हल होगा। और दूसरी बात क्या है कि योगासन भी अगर करेंगे तो खाली पेट करने से ज़्यादा लाभ होता है, और अगर भोजन कर लिए हैं तो 4 या 5 घंटे के बाद उसे करना चाहिए, तो उसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा।
1: तो कुछ आप ध्यान योग के बारे में बताइए।
2: ध्यान योग करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सुबह में 4 बजे ब्रह्म वेला में प्रातःकाल सूर्योदय होने के बिफोर जागना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय होने के बिफोर जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उसका रिजल्ट क्विक मिलता है देन एंड देयर।
1: अच्छा।
2: और सूर्य उदय होने के बाद वो पावर लेस हो जाता है। तब सबसे बड़ी बात क्या है कि ध्यान करने का समय होता है पूरब दिशा की ओर बैठना चाहिए,

0: कोई कालीन बिछा ले या दरी या कम्बल, और जब भी ध्यान करे, योगासन करे, पूर्व दिशा की ओर ही बैठकर करना चाहिए और अन्य दिशाओं में बैठकर नहीं करना चाहिए। अन्य दिशाओं में बैठकर करने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: इसलिए पूर्व दिशा में ही बैठकर ध्यान करें या योगासन करें, ये हमेशा है कि पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि पूर्व ही परमात्मा का डायरेक्ट जो है, क्योंकि सूर्य उदय पूर्व की ओर होते हैं, इसलिए पूर्व सबसे शुभ माना जाता है।
1: अच्छा। तो ये तो आप ध्यान योग के बारे में बताए, इसके अलावे कुछ और महत्वपूर्ण योगासन है उसके बारे में बताइए।
0: योगासनों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन कुछ शॉर्ट में कुछ ऐसे योगासन मैं बता देता हूँ जो कि सभी बीमारियाँ उस योगासन से ठीक हो जाता है
1: जी।
0: सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिद्धासन में पूर्व दिशा की ओर बैठकर, सिद्धासन या पद्मासन में पूर्व दिशा की ओर बैठकर फर्स्ट में गॉड का प्रे करना चाहिए, और गॉड का प्रे करने के बाद वो मात्र सिद्धासन में बैठ जाए आधा घंटा। कमर सीधा होनी चाहिए, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, उसके बाद बैठने से ही उसकी रोग तमाम बीमारियां ठीक हो जाएगी, ये सिर्फ सिद्धासन में बैठने से
1: जी।
0: और एक योगासन और मैं बताता हूँ, उसका नाम है योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन कहते हैं कि व्यक्ति अगर पालथी मारकर बैठ सके सुखासन में
1: जी।
0: जो पतले दुबले होते हैं वो ऐसे सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जो किसी का हेल्थ है अगर नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ कर करें। उस योगासन का नाम है योग मुद्रासन
1: जी।
0: अगर ये योग मुद्रासन अगर व्यक्ति करते हैं तो उसे तीन प्रकार का रोग ठीक होता है। पहला क्या है कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, दूसरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तीसरा कंस्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। तो योग मुद्रासन के विषय में थोड़ा मैं बता देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि सिद्धासन में आप बैठिए या सुखासन में बैठ जाइए, राइट साइड हैंड को लेफ्ट साइड हैंड का कलाई को पकड़ लेना है और पीछे पीठ के पीछे बैंड कर देना है, पीछे में राइट साइड हैंड को लेफ्ट साइड कलाई को हैंड को पकड़ना है और पीछे कमर की ओर ले जाना है, और श्वास को हम गहरा खींचेंगे। श्वास खींचने के बाद धीरे धीरे हम झुकेंगे और अपनी ललाट को धरती में टच करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो कुछ ही दूर झुके, उसके बाद ऊपर उठने के बाद श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठें। यह क्रिया 5 बार करने से व्यक्ति का 3 तरह का रोग ठीक हो जाती है। पहला डायबिटीज ठीक होगा, सर की दर्द ठीक होगा और कंस्टिपेशन ठीक होगा
1: जी।
0: ये है योग मुद्रासन की पावर।
1: तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है।
0: हाँ जी।
1: तो इसके अलावे भी आप और किसी आसन के बारे में बताएंगे जो बहुत ही फायदेमंद हो?
0: हाँ, एक आसन और मैं बता देता हूँ कि उसका नाम है सुखासन। सबसे आसान आसन है
1: जी।
0: सुखासन में व्यक्ति बैठकर सिर्फ क्या है कि अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग ले आए, नेगेटिव नहीं लाना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि किसी प्रकार का रोग अगर मनुष्य के अंदर है तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग अगर आ जाए तो शरीर की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मानव के अंदर 99% नेगेटिव थिंकिंग चलता है। तो पॉजिटिव को लाने के लिए ध्यान करना पड़ता है गॉड का, ईश्वर का। जब हम ध्यान करेंगे तो मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो मन स्ट्रांग हो जाएगा, तो जो सोचेंगे वो काम सफल हो जाएगा। मन कमजोर होने से नेगेटिव होता है। तो जैसे मान लिया जाए सुखासन में बैठकर गॉड का प्रे करें, और जहां पर आपको बॉडी में कोई भी कष्ट हो, तो अब क्या है कि जैसे मान लिया जाए कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द है तो आंख बंद करके आप एक शब्द को 8 बार रिपीट कीजिए कि कमर का दर्द ठीक हो गया। जब आप आंख बंद करके मन से बोलेंगे तो आपकी मन की जो वेव, जो तरंग है, पावर एनर्जी, वो डायरेक्ट कमर के पास आ जाएगा, और वो वहां की जो भी नस नाड़ियां ब्लड जो जमा हुआ है सर्कुलेशन, वह आपको ठीक हो जाएगी। तो इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, जो मन से डायरेक्ट बोलने पर

0: तो वो हर तरह का रोग को ठीक कर देता है।
1: जी, और इसके अलावे भी और किसी बारे में बताएंगे, किसी योगासन के बारे में?
0: अच्छा, योगासनों की संख्या तो काफी अधिक है
1: जी।
0: हर योगासन मानव नहीं कर सकता है, लेकिन हमने कुछ शॉर्ट में एक सिद्धासन के विषय में बता दिए कि उसमें बैठकर आधा घंटा भी बैठेंगे तो तमाम बीमारियां ठीक हो जाएगी, पहला। दूसरा चीज, एक योग मुद्रासन भी बता दिए जो उसमें तीन तरह का बीमारियां ठीक हो जाएगी। अब रही बात कि योगासनों की संख्या अधिक होने के कारण एक और इजी आसन में

बता दिए कि उसमें तीन तरह का बीमारियां ठीक हो जाएगी। अब रही बात कि योगासनों की संख्या अधिक होने के कारण एक और इजी आसन में बता देता हूँ, उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में क्या है कि दोनों

0: और इसके साथ ही एक अगर हम कोई भी योगा करते हैं तो अपने साथ कोई योग्य गुरु का भी होना जरूरी है।
1: क्योंकि विदाउट गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है।
0: जी।
1: अगर गुरु अगर आपके समक्ष अगर हैं तो उनके सानिध्य में करने से काफी कारगर सिद्ध होता है।
0: जी।
1: और अगर गुरु नहीं भी हो तो पुस्तक भी एक गुरु होता है।
0: जी।
1: क्योंकि जो गुरु शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो वो क्या है कि उनकी पुस्तक भी जो है ना, वो पुस्तक में जो लिखे हैं तो पुस्तक के अनुसार पढ़कर अगर व्यक्ति उसको अमल करे
0: जी।
1: और प्रैक्टिकल के रूप में उतारे तो वह भी उसे लाभ प्राप्त होगा।
0: अच्छा, तो कोई भी योगा करने के बाद कितने देर के बाद भोजन करना चाहिए?
1: हाँ, योगासन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, कम से कम आधा घंटा के बाद।
0: अच्छा, तो ब्रह्मचारी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और आप योगा के बारे में इतने अच्छे ढंग से बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: योग दिवस आने को है तो उससे पहले योग से क्या क्या लाभ है, कैसे योग करना चाहिए, ये आपने भेंटवार्ता सुनी। इस विषय पर भेंटवार्ताकार थे संजय आनंद ब्रह्मचारी और भेंटकर्ता थी अंजलि सिन्हा। सुर में गाना।

हजारीबाग के जंगलों में दिखने लगा दूधराज। लंबी सफेद पूंछ और खूबसूरती से बर्ड वॉचर्स को कर रहा है आकर्षित। आपने देखा क्या, जुलाई तक प्रजनन काल है इनका। कन्हरी वन्य प्राणी आश्रयणी और चोपे जंगल में दिख रहा है ये जोड़ा।

श्रोताओं, खेल की बात करें तो करजन मैदान में रस्साकस्सी प्रतियोगिता 26 जून तक चल रहा है। ये कार्यक्रम 25 खिलाड़ियों ने नशा मुक्त समाज के लिए लगाया है जोर। सामाजिक बुराइयों को दूर रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है खेल, और ये बताया है कैलाश सर ने। और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करने का संकल्प ले रहे हैं खिलाड़ी और लोग।

0: साथियों, पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन विवाटेक 2026 को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित और फ्रांस में थे पीएम। भारत की डिजिटल ताकत का दुनिया में डंका है।
1: सुर में गाना सीखिए पर
0: हेलो, हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी अपने दोस्त माणिक के साथ।

0: जियो किशोर कुमार।
1: जियो?
2: अरे नहीं यार, ये तो रजनीकांत है।
3: अरे भाई, ये तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन।
4: मस्ती की एक लहर हूँ, सैलाब नहीं हूँ, सादा सी हकीकत हूँ,

0: दोस्तों, अमन का आगाज हो गया, अब अंतिम करार की है प्रतीक्षा। अमेरिका ईरान ने 111 दिन की जंग के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हॉर्मुज खुलने का रास्ता साफ हो गया। खेल में नीरज चोपड़ा चोट के बाद दोहा डायमंड लीग से वापसी करेंगे।
1: महताब नहीं हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, अमिताभ नहीं हूँ।

हेलो हजारीबाग, अब चंद मिनटों का सवाल। एक घंटे का यह सफर अब चंद मिनटों में सिमटने वाला है। उससे पहले बता दूं कि पटना से एक खबर आई कि स्कूल कॉलेजों के बाहर 5000 स्कूटी पर सवार पुलिस दीदी रहेंगी अब तैनात। वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया।

और इस प्यारे से गाने के साथ ही एक सुविचार चलते चलते त्रासदी जीवन का मकसद सिखाती है, जैसे आंखें साफ

देखने के लिए आंसू बहाती हैं। इसके साथ ही अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को हेलो हजारीबाग से अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे हम नए अपडेट्स, नए गीत और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, हेलो हजारीबाग।

आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजने को ही है। थोड़ी ही देर में विविध भारती के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान।

0: मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरी घाट औनरिहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रूपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रूपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा हुआ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में। हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी की बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफर में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ इबारत, कुछ विचार जो है वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल के दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, किसी एक को पसंद करना कठिन है। और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी। कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे वे हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं, रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं उस गीत में, पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और इसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

0: अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे, बूंद जो बन गए मोती पर।
1: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांड्रा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र के प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 के जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि रांची कांड्रा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का काम जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। संजय सेठ ने भरोसा दिलाया कि यह रेलवे लाइन रांची बुंडू तमाड़ सिल्ली चांडिल और कांड्रा समेत आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रखंड

0: प्रभारी के राजू के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनके पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं।
1: जो हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में मतदान किया है, अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी आत्ममंथन करें, इनका बयान हताशा का बयान है, अपने गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं।
0: इधर राजद के बयान पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समीक्षा होगी।
2: क्या कुछ हुआ, समीक्षा हो रही है, सभी बातें छनकर सामने आ जाएंगी, किन परिस्थितियों में किन विधायकों ने वोट नहीं दिया या वोट क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिणाम आए, पहली बार एक दलित एक हरिजन को राज्यसभा भेजा गया, उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूं।
0: 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रांची रेल मंडल ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें टाटीसिल्वे, मधुआ, लोहरदगा, बड़काकाना, टोरी और लातेहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने भी री नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को राउरकेला और टाटानगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:20 पर टाटानगर पहुंचेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला और टाटानगर के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों और हॉल्टों पर दिया जाएगा। 21 जून को रांची के 21 केंद्रों समेत राज्य के अलग अलग शहरों में री नीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार हुई घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और परीक्षार्थियों को कई लेयर की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के प्रथम चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष जागरूकता एवं परिवार नियोजन गतिविधियां आयोजित की गईं। एएनएम, सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने योग्य दंपतियों और समुदाय को परिवार नियोजन के महत्व, अस्थायी स्थायी गर्भ निरोधक साधनों और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम ने अपनी 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान को 701 से 710 बैंड में जगह दी गई है। इस रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों के बीच आईआईटी आईएसएम धनबाद को 21वां स्थान मिला है, जबकि 13 आईआईटी में इसका स्थान 11वां रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में धनबाद में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और इसका समापन सिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक ने कहा कि नियमित योग अभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
3: रन फॉर योगा का कार्यक्रम है, जिसमें जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए या बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है, सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं बिना दवा का, बिना औषधि का।
0: बोकारो में आदिवासी जमीनों पर कथित कब्जे के मामले को लेकर बोकारो सरना विकास समिति ने प्रशासन से

0: हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने आरोप लगाया कि भू माफिया आदिवासियों के जमीन का स्वरूप बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं।
1: झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में कारों में किस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हो रहा है। चितुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी जमीन को भू माफियाओं ने उसका नेचर चेंज कर पूरा चितुलिया मौजा के जमीन बेच चुके हैं और यहाँ के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
0: झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में लगभग 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके तहत 5,850 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचारों के अनुसार सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 76,620 पर और निफ्टी 210 अंकों की गिरावट के साथ 23,960 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच होगा। इससे पहले कल धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांड्रा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। री नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। सही यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कनें, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगे और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ, उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया है कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
3: मैंने

0: हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहां से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बकिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियां बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं। मुकेश ने गाया, सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकांधा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है, और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहां तक पहुंचाना, विश्व स्तर तक पहुंचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफर सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्यबद्ध करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है, और इस गीत को आपको सुनना है, और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपालदास नीरज है, तो गोपालदास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।
1: लिखे जो खत तुझे

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है, और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने के.एल. सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लिखने के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहां सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपालदास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो उस पर 4

बजे तक बैठा रहा। नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने। बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जबां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे पन के कली वन के सवा मांगे माफ़ में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार, बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया, बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है. जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं. कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में इलैयाराजा का संगीत है. आइए सुनते हैं इस गीत को. आज्ञा दीजिए, शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो.

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठी चार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवें दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: वार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।

0: 10 मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा।

0: मुगल के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंगभंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविन्द्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया। पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।
0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी। अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरदहस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना,

0: जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के

0: अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

0: रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

0: परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत रहा हो।
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम।

0: दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत। परिवार फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल है और सलिल चौधरी का है संगीत।

थे दस मुरली की धुन सुन आईदा थे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थे राम तत थे राम तत थे।

लहर ओडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन थे थे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न झट झट सगन का सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा किट झट सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या कर साथ या थे या कर साथ या थे या कर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है।

0: है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया है कि भारत लक्ष्य से पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अनुवांशिक बीमारी के खिलाफ विशेषकर जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं।
0: विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच मुफ्त उपलब्ध है। झारखंड के करीब 8 से 10% आबादी में सिकल सेल जीन मौजूद है, जिसके लिए जल्द ही राज्य में विशेष मुफ्त जांच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 322 लाभुकों को उनके नए और सुरक्षित पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका विजन है कि 2028 तक कोशिश किया जाए कि सभी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े भाई बहन को मकान मिले।
0: केंद्र सरकार पहली जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी तैनात करेगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के वास्ते 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन मंजूर किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। सभी संदेश केवल सत्यापित नंबर 7827980287 से भेजे जाएंगे। NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की पुनर्परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। साहिबगंज जिले के राजमहल में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषिका ऐप के माध्यम से KCC लोन के आसान तरीकों की जानकारी दी गई। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने किसानों को लोन में पारदर्शिता और रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।
3: जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल युग है, उसमें यदि आप कृषिका ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में।
0: राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हजारीबाग में सर्वाधिक 3 जबकि रामगढ़, पलामू, लोहरदगा, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम में एक एक व्यक्ति की जान गई। इस बीच रांची मौसम केंद्र ने धनबाद और दुमका सहित 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है।

0: दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ जैसे सामान होते हैं LED बिजली के पंखे वगैरह लाइट का टोटल सामान, और किराए पे भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार हूँ। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, TV चला लेते हैं, TV में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली.
1: हेलो सहेली.
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे.
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी. मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से.
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं. बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है.
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस.
0: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है.
1: बहुत ज्यादा.
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना.
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं. और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है,
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं.

0: बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
1: पढ़ना
0: बहुत...
1: मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करती हैं?
1: आज कल के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से।
0: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं।
0: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंगीना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला इल्ला नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो तो सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल

0: है
1: जी, बिल्कुल देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं।
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर हैं?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती है आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं। कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए। फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर, फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह की सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। जी
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं।

0: बस मैम घर पे ही रहती हूँ।
1: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
0: जी मैम।
1: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
0: जी मैम, ये तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
1: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
0: जी, मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधरी रहती हूँ।
1: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे शाजन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी? हाँ छोड़ा है मैंने, अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है?
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम

0: स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
1: इसके अलावा और
0: गिटार सीखने लगी हूँ।
1: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
0: जी, अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
1: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
0: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
1: रेडियो आप सुनती हैं, तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
1: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या है।
1: मैम मुझे सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं, किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से। वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ,
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670-288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के

0: सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
0: आप सुन रहे हैं विविध।
3: सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत मात्र 3 महीनों में 50 लाख टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। सरायकेला में पुलिस की ओर से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। साप्ताहिक बाजार और नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को नशाखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए युवाओं से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और कर्माटांड थाना क्षेत्रों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से 9 मोबाइल और 22 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित ईटागढ़ के दुर्गम जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया है। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

0: इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. चार श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. Hmm. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 साल.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes, yes, yes, yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, their job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: Yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. Yes, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers

0: especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts, and they'll be getting their letters, and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know, just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. We have advanced. They have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employees,

0: for employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर इज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हू आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does, it's something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेस आर देयर. द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडल. ऑन द राइट ही विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड यू नो दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. देयर इज अ स्क्रीन ऑन द एट द on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his role as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं.
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, yeah, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे yes. भरा रहता था और yeah. बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable, the young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even, during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: yeah.
1: है ना.
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड द 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया. राइट, द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट. टुडे दे विल बी कंफर्म फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड देन over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager.

0: their amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेज, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार तालियां
2: हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामुनि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दें.
0: And now the welcome remarks.

0: तालियां हो जाएं।
1: श्री मनसुख मांडविया द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही वॉक्स टू द पोडियम टू गिव अ स्पीच।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
0: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
1: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त के ही दिन

0: मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कदमों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़
5: माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
5: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
6: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव,

और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को

और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए। और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाए।

है कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है।

10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, ये समझौते भी देश में

लाखों की संख्या में नए रोजगार का बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं।

भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है। दोस्तों, साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है। वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है। यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है।

0: युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country.
2: And
1: he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what माननीय
2: प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों ने आज यहां उपस्थित हर एम्प्लॉई के लिए नया गौरव दिया है।
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार कर बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात

संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तभी आपने सुना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में गाए हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये नगमा। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको दिलवाले वन का ये गीत, और आवाजें हैं अरिजीत सिंह की और अंतरा मित्रा की। मगर उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
7: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
8: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे समाप्त होता है।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जीली में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। तो हमारे अगले

0: प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें इंडिया

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि। संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बोकारो में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
2: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शन है, पहले चरण में प्रीपेड मीटर, ये करने का जो विचार है इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज, जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यता AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी ऐसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
0: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और DVC के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
3: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए कोई एक टीम आकर एक जॉइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती है तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने JSLPS की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
4: मैं JSLPS की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़े, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपकी आजीविका

0: ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन और जनसंपर्क पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाओं का तथ्यों के साथ तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि SIR के सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
1: ट्रेनिंग प्रोग्राम कमीशन के हिसाब से 20 तारीख को DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ERO AIRO करोगे, फिर उसके बाद अपने फील्ड ऑर्डर, उसके बाद वो ट्रेनिंग अपने प्रक्रिया में शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग में इनमरेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है, इनमरेशन पीरियड का है, उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग वो दोनों होगा, प्रक्रिया का भी, इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा, फिर वो फॉर्म भरवाने के लिए, इनमरेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए, कैसा वो डिटेल ट्रेनिंग होगा।
0: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज SIR कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि बैठक में SIR की बारीकियों पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया गया। CIPET रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के कुछ इंटरनेशनल लिंक मिले हैं।
2: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे और फिर धीरे धीरे उन्हें मतदान करते हुए उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ATS के द्वारा किया जाता है।
0: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एरिक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि। संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी, पैराफिन जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के इनामी सब जोनल कमांडर एवं एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खरवार पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि JJMP के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। जो शिवा सिंह खेरवार है इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष पूरे जिले में 15,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल का बचाव जरूरी है।
3: लोगों से मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, दूसरा उसको रीयूज करें, तीसरा कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते, रिसाइकिल करें, ये 3 प्रिंसिपल अडॉप्ट करें।
1: इस मौके पर लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
4: विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी जनता से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, फिर प्लास्टिक का यूज कम करें, सोलर पावर का ज्यादा यूज करें और वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो पनसोखा या जो भी घरों के बगल में लगाते हैं जिससे कि वाटर लेवल मेंटेन रहे, ये 4 चीज मेंटेन करते हैं तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो है गोल जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं।
1: लातेहार में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से सशक्त एवं अनुसंधान कार्यों में दक्ष बनाना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पलामू प्रक्षेत्र के DIG कौशल किशोर ने कहा कि
5: देखिए लातेहार थाना अंतर्गत दुर्वा क्षेत्र में आज एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक लातेहार और समस्त स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, शहरों में सभी स्थानों पर जाएं और जाकर लोगों के साथ सीधे संवाद करें और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको समझने का प्रयास करें।
1: लातेहार जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशापान से दूर रखना है। यह कार्यक्रम 15 जून से 25 जून तक चलाया जाएगा। जागरूकता रथ रवाना करने के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
4: 15 से लेकर 25 तारीख तक गाँव में विशेष कर जाकर जो नशा लिप्त लोग हैं उन लोगों को हम लोग परसु करेंगे, उन लोगों को हम लोग समझाएंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार।
6: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम झनकार।

0: तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में गाए इस गीत को।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे सांस से। संकलन एवं वाचन दिया है परमेंद्र कुमार मिश्रा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और एवं संयोजक है विक्रम कुमार रंजन।

0: खेलेंगे शान से
1: कार्यक्रम खेलेंगे शान से के आज के इस ताजे अंक में आप सभी श्रोताओं खिलाड़ियों खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें अपने रेडियो दोस्त प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं आज के इस अंक में बातें करेंगे बैडमिंटन खेल की और जानेंगे इस खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। बैडमिंटन खेल का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसकी उत्पत्ति भारत के पुणे जो अब पुणे के नाम से जाना जाता है शहर में हुई। बाद में अंग्रेज अधिकारी से इंग्लैंड ले गए जहां बैडमिंटन हाउस में इस खेल को खेले जाने के कारण इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। इस खेल में मुख्य रूप से रैकेट को पकड़ने का तरीका यानी ग्रिप, सही फुटवर्क और शरीर का संतुलन शामिल है। इसमें शटलकॉक या शटलॉक को नेट के ऊपर से मारकर विपक्षी के कोर्ट में गिराने या उनसे गलती कराने के लिए स्मैश और ड्रॉप जैसे स्ट्रोक खेले जाते हैं। यह खेल एकल और युगल दोनों रूपों में खेला जाता है। यह विश्व भर में ओलंपिक खेल के रूप में भी शामिल है। बैडमिंटन में हर जीतने वाला सेट 21 अंकों का होता है, लेकिन स्कोर अगर 20-20 का हो जाता है तो अगला अंक जीतने वाला सेट जीत जाता है। और इसके अलावा सर्व करने का अधिकार और स्कोर के आधार पर खिलाड़ी बारी बारी से सर्व करते हैं। बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई अहम बातों को जानेंगे एक्सपर्ट की राय से। कार्यक्रम के इस खंड में हम मिलवाने जा रहे हैं हजारीबाग बैडमिंटन खेल एसोसिएशन के सचिव प्रोफेसर वाई जग्गी सर से। इनसे जानेंगे कि इनके माध्यम से बैडमिंटन खेल और यहाँ के खिलाड़ी किन जज्बों के साथ खेल रहे हैं। आज हमारी बातें हो रही है प्रोफेसर वाई जग्गी जी, आज जानते हैं इनसे कि बैडमिंटन खेल में हजारीबाग के खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया है और आगे भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं। सर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार। हजारीबाग में बैडमिंटन की संभावनाएं तो बहुत है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारे यहाँ नियमित तौर पर 40 से 50 बच्चे आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और उनके लिए हमने 2 कोचेज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है उनके लिए। लेकिन जब हम लोग के समय में जब हम लोग खेलते थे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो जज्बा वो पैशन अब के बच्चों में देखने को नहीं मिला। हम लोग जिस तरह से इस खेल को लेते थे सीरियसली, हमारे कोचेज हमको मॉर्निंग में बुलाते थे अगर प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग ग्राउंड में अगर 5 बजे बुलाए तो हम लोग ग्राउंड में 5 बजे रहते थे, नो एक्सक्यूज, नहीं तो पनिशमेंट मिलती थी। आज कोचेज ग्राउंड में खड़े होते हैं, हार्डली 1 या 2 बच्चा ग्राउंड में आता है। स्टेडियम में बुलाइए, गेम खेलने के लिए उनको परमिशन दीजिए, दे विल डू इट विलिंगली, बहुत खुशी से करेंगे। लेकिन जहां उनको बोलेगा कि प्रैक्टिस करना है, स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है, तो वो उतने दिल से नहीं करते। उनके एक्सक्यूजेस क्या है कि हमारा स्कूल है, हमारी पढ़ाई भी है, पढ़ाई की अहमियत देनी अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा खेलेगा, मेरा ये फर्म बिलीव है, जो बच्चा खेलेगा वो पढ़ेगा भी, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जुड़ते हैं। 7-8 साल से मैं लगा हुआ हूँ कि बच्चे कुछ स्टेट प्लेयर बने लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो है वो बच्चों की जो जुनून है वो नहीं देखने को मिल रहा। तो इसी चीज को सोचते हुए फिर मैं स्टेट सेक्रेटरी से मिला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर। एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या है, वो बच्चे यहाँ पर पूरे झारखंड स्टेट से उनका सिलेक्शन होगा, हमारे पास रहने के लिए बहुत अच्छा, एकोमोडेशन के लिए बहुत अच्छे रूम्स हैं, ऊपर में सारी फैसिलिटीज हैं, तो बच्चे यहाँ रहेंगे, गवर्नमेंट उनको रहना खाना पढ़ना सारी फैसिलिटीज, इवन जो खेलने के इक्विपमेंट्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, वो भी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो उनके साथ क्या है कि कोचेज भी प्रोवाइड करेंगे, नाइस कोचेज आएंगे यहाँ पर। तो उन बच्चों के साथ क्या है कि हम उनको अगर 4 बजे ग्राउंड में बुलाएंगे तो बच्चे 4 बजे आएंगे। अच्छा, उनके पास ना मोबाइल एक्टिविटीज होगी, उनके पास वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहेंगे और तब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हजारीबाग से स्टेट चैंपियन होंगे।
1: तो ये थे खेल एक्सपर्ट जिनकी राय हमने जानी। साथ ही हमने बातें की हजारीबाग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से, आइए जानते हैं उनके खुद की जुबानी जीत का जश्न और भविष्य के प्रतिमान को।
3: शुभम, हमारे प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, अपने प्रतिभा के दम पर हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने सफलता के कई परचम लहराए हैं।
4: हेलो, मैं निष्ठा राणा, मैंने बैडमिंटन खेला है और मैं सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ती हूँ और SGFI नेशनल्स खेली हूँ और ईस्ट जोन भी गई हूँ, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है। मेरा बचपन से ही बैडमिंटन में काफी इंटरेस्ट रहा है और अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ।
3: तो वहाँ कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस?
4: डिस्ट्रिक्ट में विनर रनर दोनों आई हूँ और फिर स्टेट्स में क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे हम, देन ईस्ट जोन में फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गए थे और नेशनल्स खेले थे।
3: और आप भविष्य में और अच्छा करें, ये शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। हमारे बीच एक और खिलाड़ी यहाँ मौजूद है बैडमिंटन खेल से संबंधित, क्या नाम हुआ आपका?
5: मेरा नाम होली साक्षी रोबा है।
3: तो आप बैडमिंटन खेल में किस तरह से आई, कैसा आप आपका परफॉर्मेंस रहा अब तक?
4: मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया था 19 में और मेरे पापा की वजह से मैंने ये गेम को स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 3 साल तक प्रैक्टिस किया और तीसरे साल में मतलब 2023 में मैं SGFI नेशनल्स खेलने पाई थी जिसमें 4th राउंड में हम लोग आउट हुए थे हमारी पूरी टीम। उसके अलावा मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड और मेडल दोनों जीता है और मैंने स्टेट के लेवल पे भी खेला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा मुकाबला हुआ था भव्या के साथ जो कि DVC की एक प्लेयर है।
3: तो आप आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आपको अगर मौका मिले तो?
4: अभी तो मैं जब कॉलेज ज्वाइन करूंगी तो मैं बैडमिंटन कंटिन्यू करना चाहती हूँ और जितना आगे हो सके मैं बैडमिंटन को आगे खेलना चाहूंगी।
3: आपके कोच कौन है?
4: अभी हमारे कोच अश्विनी जी हैं।
3: और बैडमिंटन खेल में क्या क्या उम्मीदें हैं आपको और कौन कौन सा सहयोग जो है एसोसिएशन हजारीबाग से आपको मिलता रहा है?
4: बैडमिंटन में हमारे देखिए जो अभी हम स्टेडियम में खेलते हैं काफी अच्छी तरीके से वो फर्निश्ड कर दिया गया है। अंदर जो कोर्ट्स हैं वो सभी काफी साफ है, फर्निश्ड है, नए शटल वगैरह भी खरीदे जाते हैं, जो भी हमें जरूरतें होती है वो सारी पूरी कर दी जाती है स्टेडियम में।
3: हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हजारीबाग का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। राणा जी और होली साक्षी जी आप दोनों को शुभकामनाएं
4: जी। थैंक यू।
1: कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल मंत्र। बैडमिंटन खेल के चीन के एक महान खिलाड़ी लिन डैन का कहना है कि मुझे खेलने से ज्यादा जीत पसंद है। और दोस्तों कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है सुनो खिलाड़ियों। इस खेल में मजबूत शारीरिक फिटनेस, सही स्ट्रोक तकनीक और चालाक रणनीति का सही संतुलन होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल टिप्स। बैडमिंटन खेल में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग दिशाओं में शटल मारकर प्रतिद्वंदी को दौड़ाएं और गलती करने पर उसे मजबूर करें। जल्दबाजी न करें, कमजोर रिटर्न का इंतजार करें और मौका मिलने पर ही दमदार स्मैश लगाएं। याद रखें रक्षा और आक्रमण दोनों ही जीत के लिए आवश्यक है। शहर में कई खेल गतिविधियां इन दिनों चल रही हैं। हमारी मुलाकात हुई एथलेटिक्स खेल के एक्सपर्ट से। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में।
3: हजारीबाग स्टेडियम हम आए और यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही नीरज कुमार राय जी से जो यहाँ पर एथलेटिक्स के कोच हैं। सर आपको नमस्कार।
0: नमस्कार सर, मैं राष्ट्रीय पदक विजेता और अभी झारखंड सरकार में आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में प्रशिक्षक हूँ। आज बच्चे गर्मी छुट्टी के बाद वापस आए हैं तो सबसे पहले आज इनका बॉडी वेट हुआ। बॉडी वेट हम लोग जाने से पहले लिए थे और अभी लिए हैं। इसके बाद अभी बच्चे कुछ दिन ट्रेनिंग से आउट रहे तो इंडोरेंस वर्कआउट में इनके ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर फिर हम लोग मुख्य ट्रेनिंग में जाएंगे। बच्चे आज जनरल फिटनेस एक्सरसाइज किए, उसके बाद कंटिन्यूअस स्लो कंटिन्यूअस जिसमें इंडोरेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो 30 मिनट का आज सेशन था। स्लो कंटिन्यूअस 30 मिनट पूरा होने के बाद फिर ये जनरल एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए हैं। कूल डाउन बच्चे करके बॉडी रिलैक्स होने के बाद आज पुनः स्कूल के लिए अभी देख रहे आप जा रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हम लोगों का जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं सारे शुरू हो जाएंगे जिसके लिए प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर दिए हैं और शायद ये अगस्त मंथ में हमारा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होना है चंदन कैरी बोकारो में जिसका प्रिपरेशन चल रहा है। उसी गेम से नेशनल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सारे बच्चे जो यहाँ फर्स्ट सेकंड आएंगे वे सेलेक्ट होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे।
3: उनकी स्वर्णिम भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नीरज कुमार राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आपका विशेष स्वागत और नमस्कार।
1: और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले खंड में जो कि है खेल अपडेट्स। इस सेगमेंट में आज हम जानेंगे खेल जगत से जुड़ी खबरों को, साथ ही अखबार में छपी खबरों पर डालेंगे एक नजर। JSCA स्टेडियम में चल रहे झारखंड T20 क्रिकेट लीग के 8वें दिन अनमोल राज की तूफानी पारी भी संथाल स्ट्राइकर्स को जीत नहीं दिला पाई। जमशेदपुर स्टीलर्स ने यह मैच 16 रन से जीत लिया। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम अब नेशंस कप के अपने आखिरी लीग मैच में बुधवार को उरुग्वे से खेली। भारत ने PH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल भारत का मुकाबला चिली से होगा। अर्जुन सिंह और वीर शाह को बुधवार को इस साल के आखिर में होने वाले पिकल बॉल विश्व कप के लिए क्रमशः अंडर 18 और अंडर 14 वर्ग के लिए भारत का कप्तान चुना गया। शतरंज में आदित्य और नवीएका को प्रथम स्थान। 25वीं झारखंड राज्य सब जूनियर अंडर 15 फीट

0: रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। करीब 70,000 दर्शकों के बीच बुधवार देर रात इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का जादू सिर चढ़कर बोला। हैरी के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फुटबॉल विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। डीआर कांगो के 29 वर्षीय स्ट्राइकर योआने विस्सा ने पुर्तगाल के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में अपनी टीम की बराबरी का गोल दागा। विश्व कप के शुरुआती 24 मुकाबलों में टीम के द्रोणाचार्य यानी कोच के मिडफील्ड की मजबूती सफलता दिला रही। शुरुआती 24 मैचों में 48 टीमों ने 9 अलग अलग फॉर्मेशन अपनाई, जिनमें 4-1-2-3 और 4-2-3-1 सबसे ज्यादा सफल रही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने कहा कि मानसिक रूप से मजबूत रहने से उन्हें हाल के खराब प्रदर्शन में उबरने में मदद मिली। इसके साथ ही टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने भी सहज और शांत होकर खेलने में उनकी सहायता की। महिला T20 विश्व कप में 2 मैच जीत चुकी भारतीय टीम। हाल में नीदरलैंड के खिलाफ शेफाली ने मंधाना के साथ 115 रन जोड़कर लय में लौटने के संकेत दिए। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में चोट से वापसी करेंगे, जहां उनका मुकाबला श्रीलंका के उभरते सितारे रमेश थरंगा पथिरागे से होगा। इधर झारखंड T20 क्रिकेट लीग में धनबाद डायमंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में धनबाद ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जीत का खाता खोला। अपने पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। टीम की ओर से अरविंद कुमार ने 41 गेंदों पर 62 रन और कुमार सूरज ने 30 गेंदों पर 41 रन की उपयोगी पारी खेली। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत हजारीबाग जिला खेल कार्यालय की ओर से गुरुवार को कर्जन मैदान में बालक और बालिका वर्ग की रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी खेल खबरें कुछ खेल जगत से जुड़ी हुई। कार्यक्रम से विदा लेने से पहले हम तो यही कहेंगे, कोर्ट पर जब शटल कॉक उड़े तेज, हर क्षण होता है सपनों जैसा। सटीकता और बल का संगम है यह खेल, हर जीत में छिपी है मेहनत की रेल। श्रोताओं, अगर आप कोई मार्गदर्शन या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें सुझाव दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर कुछ करें। हमारा पता है, कार्यक्रम खेलेंगे सांसे, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग, पोस्ट बॉक्स संख्या 1, पिन संख्या 825301। खेलेंगे सांसे के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम ताजा तरीन खबरों और खेल गतिविधियों के रोचक जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें यानी अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र कुमार मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन।
1: तो अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे सांसे। संकलन एवं वाचन दिया था परमेंद्र कुमार मिश्रा ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेलेंगे सांस से। पेश है हमारा अगला कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए प्रोग्राम का पहला नगमा।

तो अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गाए इस गीत को, और प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट से ही पे समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे हैं दोस्तों को आपके रेडियो दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों प्रोग्राम का पहला खत हमें भेजा है सुपाई साई से। आप हैं देवेंद्र दाती, राकेश, प्रकाश, रेशमा, निशा, प्रीति और देवन जी। आप हैं पतरातू से बेसिल खलको, सेसिल खलको, मधु, रिचू, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्वी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, मनीषा, शोरेन और परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं भागलपुर से गणेश, सुधा, पूजा, विकास, नितिन और मनोज पासवान। तो आइए आप सबों की फरमाइश पर प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं अपने राज्य केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: फिर साथ अपने दोस्त राजेंद्र को आज का यह कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा।

0: इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं और इसके पीछे कारण है। उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आदि, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
3: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओस तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे,

0: बोडोस के इंसर्जेंट थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ही डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन, तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रो

ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हम

0: कि जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा

0: था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथारिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था और जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए, मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
0: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस्ड एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं भारतीय प्रवासी जो उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर इस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है, ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में

0: इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 20

0: 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: दिस इज द कंट्री।
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, अश्मिता चालीहा टू फेस पाकिस्तान।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा, बस कुछ ही पल में।

तो कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में गाए इस गीत को।

तो अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पेन गेस्ट का ये नगमा, और आइए आगे पर सुना रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में अनाड़ी फिल्म का ये नगमा। और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पे समाप्त होता है। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

तो आज हम सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से में 1966 में आई फिल्म आए दिन बहार के फिल्म के गीतों को। यह फिल्म बेहद लोकप्रिय संगीतमय फिल्म रहा। इसके सदाबहार गीतों को दिग्गज लक्ष्मी कांत प्यारे लाल ने संगीतबद्ध किया और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने। तो आइए शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का पहला नगमा से।

तो अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज आप सुन रहे हैं आए दिन बहार फिल्म के गीतों को। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों में इस गीत को।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं पे समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण

0: तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure

भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने अपने इस पद में भाव व्यक्त किया है कि वास्तव में तो कन्हैया ने माखन चुरा करके खाया है। इतना ही नहीं, इस माखन चोरी की लीला को माँ यशोदा ने स्वयं देख भी लिया है। मैया पूछ बैठी, कन्हैया माखन चुरा कर क्यों खाया? डरते हुए अनायास कन्हैया कह बैठे, मैया मैं नहीं माखन खाए। अब अपने कहे हुए नहीं को किस प्रकार से निभाया है, ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया कि मैंने माखन नहीं खाया। इतना ही नहीं, माँ यशोदा को भी मनवा लिया कि अच्छा तूने माखन नहीं खाया।